0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, लार्ज

0: night the petition was filed, and the lawyers have in fact urged the High Court to have a special Sunday sitting today to grant this prayers of Gitanjali Angmo. She wants him to be shifted to a private hospital of her choice because she says she has no trust in the Safdarjung Hospital. Now, a response remains pending from the High Court. We have learned from the lawyers that High Court is yet to respond to this plea for an urgent hearing by Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo. It will remain to be seen whether the High Court decides to hear the plea today or tomorrow.
1: Thank you so much for getting us those details. So we will keep coming back to you for more on that. So it's Sonam Wangchuk's removal from the protest site that's triggered this political storm. Opposition parties have been questioning the action, with the Congress there calling the move anti-democratic. Samajwadi Party has said that Wangchuk was only following the path of Mahatma Gandhi, while the CPI said that authorities may detain a person but cannot detain the cause behind the movement. Sonam Wangchuk has penned a letter from his Safdarjung Hospital calling his removal an illegal detention. In his message, Wangchuk has gone ahead and said that his fight was for freedom, not, you know, as far as this is freedom from injustice and fear, and described the campaign as India's second freedom movement. Union Minister, however, has said that Education Minister, Dharmendra Pradhan, doesn't have to resign, and added that Wangchuk has every right to suggest measures to the government, including steps to prevent issues like the paper leak. This is a neat paper leak that has already taken place to avoid such incidents in the future.
2: रात को किसी को उठाकर पुलिस बल का प्रयोग कर इस प्रकार से जबरन ठूस देना जेल के अंदर, ये सरासर गलत है, ये प्रजातांत्रिक है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और प्रजातंत्र का हनन है। ये कदापि प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी और व्यक्तिगत तौर से मेरी ओर से भी मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूं, इसका खंडन भी करता हूं और ये मांग करता हूं कि बगैर किसी शर्त के और देरी के श्री सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और शांतिप्रिय तरीके से कानून के अनुरूप जो वो विरोध कर रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन करने की उन्हें इजाजत दी जाए।
3: One Sonam Wangchuk, but the ideas, the slogans, and the cause for which the struggle begins, that cannot be detained. It will continue, and we are sure they have to step down. Dharmendra Pradhan has to step down. Badlav jaruri hai.
4: इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या होगा कि गांधी के देश में जिन्होंने अहिंसा के और अनशन और भूख हड़ताल के जरिए अंग्रेजों को भगाया, उस देश में जो लोग उस समय अंग्रेजों को मुखबिरी कर रहे थे कि शासन बन जाने के बाद उन्हीं गांधी के रास्ते पर चलने वाले सोनम वांगचुक को बात करने लायक नहीं समझा, पहले तो जेल में डाला था, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर छूटे और अभी अहिंसक शांतिपूर्वक धरने से पुलिस उठा कर लेकर चली गई। शर्म आती है कि गांधी के देश में कैसी भी सरकार होगी।
5: जो वांगचुक जो हमारे लद्दाख के नेता हैं और उन्होंने मतलब जो अनशन शुरू किया है, कम से कम अभी 15-16 दिन या इतने कुछ दिन हो रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन देना ही चाहिए, इसी तरह की मांग जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने फौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिन्होंने मतलब पेपर भूटे में जिनका संबंध उनको अरेस्ट कर दिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देने की आवश्यकता नहीं है और वांगचुक ने अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए।
1: Switching tracks now to the monsoon session that's starting on Monday, the 20th of July, and the political temperature that's already soaring. We have an all-party meeting coming up today that will set the tone with the government that's announced 5 new bills that will be introduced in the parliament during the monsoon session. The developments outside parliament are reshaping the political landscape. TMC rebel MPs and NCPI MPs have been invited for... This is today's all-party meeting with Kakoli. They're set to attend as a chief whip of the NCP faction. Meanwhile, Lok Sabha Speaker has approved the merger of 6 Shiv Sena UBT rebel MPs, with Eknath Shinde-led Shiv Sena taking the party's strength in the Lok Sabha to 30.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: and has taken its biggest turn yet. On the eve of the monsoon session, we heard Speaker Om Birla, who has granted separate seating to the 20 rebel MPs who broke away from the TMC and announced their merger with the NCPI. Now, Abhishek Banerjee issued an open challenge to all the rebel MPs and the MLAs, daring them to come back to Mamta's camp and promising that he will resign within 24 hours if they do. TMC MP Derek O'Brien also jumped in and accused Speaker Om Birla of mocking over, referring to those 20 traitors as still being TMC MPs and them getting invites for the old party meeting that is underway. The battle over who represents the real TMC moves squarely into the Speaker's chambers.
1: Pid netara, BJP jhanda niye, gerua phetti mathay bede. গেরুয়া উত্তরীয় পড়ে মুখ ঢেকে সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে, এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। যদি ভাবেন যে বিজেপির নেতারা আমাদের বাঁচাবে, আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছেন, আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর, পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া, যে ধারায় যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না।
2: আম কি পাও ট্যাঙ্কের মধ্যে কি আছে সেটা দেখতে হবে, আমি জানি না কি কি পেয়েছে না পেয়েছে। বাড়িটাই যেখানে ইলিগাল সেখানে ডেফিনেটলি ইলিগাল কাজকর্মই কিছু হতো।
3: নিন্দা করুঙ্গা কি অত্যাচার হয়, আনডেমোক্রেটিক হয়, ইয়ে তো কিসি তরহ সে তৃণমূল কো হিট করনে কা কোশিশ হয়।
4: आज बोले हैं यस्टरडे क्या बोले थे, बोले थे जो लोग सब लुटेरा है वो लुटेरा लोग डर के मारे ईडीआई सीबीआई डर के मारे चले गए, तो कल बोल रहे हैं लुटेरा लोग चले गए, तो फिर वही लुटेरा लोगों को बोल रहे हैं आप वापस आ जाइए, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। और देखिए जो हालत है, 4 तारीख जब चुनाव का नतीजा निकला मई महीने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। अपना जो मैंने जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, सैंक्चुअरी होता है, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट का सैंक्चुअरी से निकल ही नहीं रहे हैं। एक बार निकले थे, क्या हुआ है बंगाल का आवाम का मालूम है।
0: And switching tracks now, the political battle over the alleged Ram Temple fund theft has intensified. It is Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge of the Congress party that have written a letter to Prime Minister Modi demanding what they call an independent probe into the case. In the letter, the two leaders questioned the silence of the Prime Minister seeking a full public disclosure when it comes to the accounts of the trust and asking how devotees' offerings were used, and saying that those responsible must be held accountable. The BJP, of course, is hitting back, accusing Rahul Gandhi firstly for just coming back and from a holiday abroad, and the Congress of targeting Sanatan Dharm, questioning Rahul's timing from his, you know, getting back from his vacation, and saying that the party has no moral authority to lecture on matters of faith. Let's listen in to the BJP.
5: My Ram Ram to all. And what to say about Mr. Rahul Gandhi? He has come back from the vacation. So good morning to Rahul Gandhi. And what to say about Mr. Mallikarjun Kharge? We know very well that what type of mindset his family comes from, what his son said about the Sanatan Dharm virus and whatnot all. So these two people who do not have any faith, believe in Sanatan, they are halal Hindus. They should not try to teach us that what we have to do. Rahul Gandhi and his mother, they are out on bail. All right. So they are accused. They are out on bail. So what should we do? Should we get the orders, or should we write the letter, or should we do some sort of agitation and protest that whole of Indian National Congress should come out with an explanation, or they should be checked out from the party?
6: पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी द्वारा गठित ट्रस्ट ने राम मंदिर को, जिस दिन से राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ उस दिन से लूटा है, चाहे वो जमीन से लेकर के आ तक चंदे चढ़ावे तक। उसके पहले भी जो चंद आया था शिला पूजन का पैसा, उसमें भी 1400 करोड़ के लूट के आरोप लगे। आज राम मंदिर में जो ट्रस्ट है उसकी विश्वसनीयता खत्म, कोई ट्रस्ट नहीं रहा उस पर। उसके लिए जरूरी है कि लोगों में वो विश्वास और आस्था है कि ट्रस्ट में लोगों का राम मंदिर में आस्था बरकरार हो, और वो जब सब सरकार के बीजेपी आरएसएस के बीच हिंदू परिषद के लोग उस ट्रस्ट में हैं तो, और सरकार जांच कर रही है, तो जब तक कोई निष्पक्ष एजेंसी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
5: so many attacks,
4: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interview.

0: கட்டிய மனைவிக்கு சோறு போடாமல் பெற்ற பிள்ளைகளை நடுரோட்டில் விட்டு விட்டு ஒரு மன்னத்திலே வந்து கொண்டு அப்பாவை தேடுகிறேன் என்று கேட்கிறவனுக்கு அப்பாவுடைய புகழ் தெரியாது, பெருமை தெரியாது. அந்த இடத்துல அதைத்தான்
1: This is ridiculous. The DMK should not get themselves involved in personal debts. It is absolutely nonsense. And if we talk about DMK, then shameless people, they should not talk like this. They should see themselves in the mirror first. So personal abuses are definitely highly condemnable. They should not talk like that. And the DMK is known for all kind of cultureless attitude. This is what the DMK is. I strongly condemn the DMK, whoever has said personal remarks against Vijay. You should not never talk anything about personal. Why should they talk about personal? Then if they talk, then the TVK or other people, they will talk about a lot of personal things about the DMK family. Why you want all those things?
2: Switching tracks now to Uttar Pradesh, and the political battle over the alleged Ram Temple fund theft has only intensified. We also have Rahul Gandhi as well as Mallikarjun Kharge of the Congress party now writing to the Prime Minister demanding that they call for an independent probe into the case. In fact, they want the Prime Minister to break his silence, seeking full public disclosure when it comes to the accounts of the trust, asking how were the offerings that were being made by devotees, how were they being used, and says those who are, you know, found to be responsible must be accountable. The BJP has hit back sharply, saying that now that he's returned from his holiday, the timing of all of this is being questioned, and saying that the party has no moral authority to lecture on matters of the faith. Let's get you the political reactions coming about from the BJP.
3: देखिए, पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी द्वारा गठित ट्रस्ट ने राम मंदिर को, जिस दिन से राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ उस दिन से लूटा है, चाहे वो जमीन से लेकर के आज तक चंदे चढ़ावे तक। उसके पहले भी जो चंदा आया था शिला पूजन का पैसा, उसमें भी 1400 करोड़ के लूट के आरोप लगे। आज राम मंदिर में जो ट्रस्ट है उसकी विश्वसनीयता खत्म, कोई ट्रस्ट नहीं रहा उस पर। उसके लिए जरूरी है कि लोगों में वो विश्वास और आस्था है कि ट्रस्ट में लोगों का राम मंदिर में आस्था बरकरार हो। और वो जब सब सरकार के, बीजेपी आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के लोग उस ट्रस्ट में हैं, तो और सरकार जांच कर रही है, तो जब तक कोई निष्पक्ष एजेंसी जांच नहीं करेगी तब तक क्या होगा?
4: हम तो शुरू से इस राय कहते हैं कि राज्य सरकार ने जो SIT बनाई है वो पूरे मामले की जांच नहीं कर पाएगी, और पूरे देश का विश्वास वो संगठन अर्जित नहीं कर पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करे, ये हमारा शुरू से कहना है।
5: माय राम राम टू ऑल, एंड व्हाट टू से अबाउट मिस्टर राहुल गांधी, ही हैज कम बैक फ्रॉम द वेकेशन, सो गुड मॉर्निंग टू राहुल गांधी। And what to say about Mr. Mallikarjun Kharge? We know very well that what type of mindset his family comes from, what his son said about the Sanatan Dharma virus and whatnot all. So these two people who do not have any faith, believe in Sanatan, they are halal Hindus, they should not try to teach us that what we have to do. Rahul Gandhi and his mother, they are out on bail. All right. So they are accused, they are out on bail. So what should we do? Should we get the orders, or should we write the letter, or should we do some sort of agitation and protest that whole of Indian National Congress should come out with an explanation, or they should be checked out from the party?
2: And with that, it's a wrap on this edition. News and updates will continue on the other side. Thank you for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Chandran is not a member of DNC. I don't know what he said or why he said about that. But all what you are telling is true. What Mr. Balu said was, women's reservation bill can be passed even with the existing number 543. And delimitation bill, government, what is going to do, we do not know, we are not aware of. It is no clear indication from the government. But any attempt which is to be made, if it affects the interest of the southern states, DMK will oppose it strongly. Our representation should not come down. Already we are at 8 of suffering. And in future, if the numbers increase in northern states, totally our saying will not be there in the vice president election or any bill that is passed, our say will just will be in the dip. And it will be dimmed. So in that case, earlier there was a meeting of the Southern State Chief Minister in Chennai, headed by Mr. K. Stalin, in which we passed a resolution that it can be frozen for 24 days.
1: तो तमाम मुद्दे जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे जंतर मंदिर पर जो सोनम बागचू के साथ हुआ वो सवाल हो, चाहे मंदिर का सवाल हो, चाहे बेरोज़गारी का सवाल हो, वो तमाम मुद्दे जो इस समय देश के सामने हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन मुद्दों पर सरकार चर्चा कराए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जहाँ तक संसद चलाने का सवाल है, उसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। प्रतिपक्ष चाहता है कि देश के जो मुद्दे हैं उठें, वो सरकार से अपेक्षा करता है कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। तनाव जब पैदा होता है, जब जनजीवन से जुड़े हुए सवालों पर भी सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता।
2: अभी समय उन्होंने पब्लिश कर रहे हैं, हम नहीं अबेट करेगा।
1: हाँ,
2: हम पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के ओपिनियन और उसको एडवाइस में नहीं हमारा काम कर रहे हैं। हमारा इंडिपेंडेंट है, दिस अवर डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को कुछ भी नहीं दें, वो हमारा राइट है प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, नथिंग।
3: AI जनरेटेड फोटोज नहीं लाना चाहिए, पिछले सत्र में हंगामा हुआ था इस पर।
2: उसके बाद दैट्स अ अलग इशू है, डिफरेंट इशू है, बट इसमें पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को कोई काम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, वो स्पीकर का अधिकार होना चाहिए। इट्स नॉट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, स्पीकर हैव द अथॉरिटी टू से सो, नॉट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी।
3: आप अपना जैसे प्रदर्शन करते हैं सत्र में करते रहेंगे।
2: हाँ, करते रहेंगे डेफिनेटली।
4: Switching tracks now to Sonam Wangchuk's removal from the protest side has triggered a political storm. The opposition parties have questioned the action that's been taken by the government. The Congress is calling the move anti-democratic. Samajwadi Party says that Sonam Wangchuk was only following the path of Mahatma Gandhi. While the CPI said that authorities may detain a person, but they cannot detail the cause behind the movement. Sonam Wangchuk has penned a letter from the Safdarjung Hospital, this is the government hospital in the national capital, calling his removal illegal detention. In a message that he has put out in his own handwriting, saying that his fight was for freedom from injustice and fear, and described the campaign as India's second freedom movement. In fact, his wife is now moving the High Court today in order to have him moved out to a private hospital instead.
5: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं, कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं, तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
6: रात को किसी को उठाकर पुलिस बल का प्रयोग कर इस प्रकार से जबरन ठूस देना जेल के अंदर, यह सरासर गलत है, यह प्रजातांत्रिक है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और प्रजातंत्र का हनन है। यह कदापि प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी और व्यक्तिगत तौर से मेरी ओर से भी मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूं, इसका खंडन भी करता हूं और ये मांग करता हूं।

0: कि बगैर किसी शर्त के और देरी के श्री सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और शांतिप्रिय तरीके से कानून के अनुरूप जो वो विरोध कर रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन करने की उन्हें इजाजत दी जाए।
1: कैन डिटेन ए सोनम वांगचुक, वन सोनम वांगचुक, बट द आइडियाज, द स्लोगन्स एंड द कॉज फॉर विच द स्ट्रगल बिगिंस, दैट कैन नॉट बी डिटेन्ड। इट विल कंटिन्यू एंड वी आर श्योर दे हैव टू स्टेप डाउन। धर्मेंद्र प्रधान हैज टू स्टेप डाउन। बदलाव जरूरी है।
2: इससे पात्र भाग्य का क्या होगा कि गांधी के देश में जिन्होंने अहिंसा के और अनशन और भूख हड़ताल के जरिए अंग्रेजों को भगाया, उस देश में जो लोग उस समय अंग्रेजों को मुखबरी कर रहे थे कि शासन बन जाने के बाद उन्हीं गांधी के रास्ते पर चलने वाले सोनम वांगचुक को बात करने लायक नहीं समझा, पहले तो जेल में डाला था, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर छूटे और अभी अहिंसक शांतिपूर्वक धरने से पुलिस उठा कर लेकर चली गई। शर्म आती है कि गांधी के देश में कैसी भी सरकार होगी।
3: हाँ, जो वांगचुक जो हमारे लद्दाख के नेता हैं और उन्होंने मतलब जो अनशन शुरू किया है कम से कम अभी 15-16 दिन या इतने कुछ दिन हो रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन देना ही चाहिए इसी तरह की मांग जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने फौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिन्होंने मतलब पेपर फूटे में जिनका संबंध उनको अरेस्ट कर दिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन देने की आवश्यकता नहीं है और वांगचुक ने अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए।
4: Let's get you the latest when it comes to the escalation as far as the US and Iran is concerned. That's continuing to spiral, with Iran claiming fresh retaliatory drone strikes on two US military facilities in Kuwait. This has come about on the heels of the US airstrikes targeting Iranian military infrastructure. Tehran says it hit an ammunition depot at the Camp Al-Adiri and Patriot and surveillance radar systems at the Ali Al-Salim Air Base. Earlier it was President Trump had ordering fresh strikes after two US service members were killed in an Iranian missile and drone attack that took place in Jordan, warning of even bigger military action if Iran escalates this situation any further. Then we had Iran's Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei, who has said that Iran is fully prepared to respond, warning that the United States and its allies of unforgettable lessons as tensions are continued to just spiral out of hand. Time for some sports news. Now, the wait is finally over. Tonight at the MetLife Stadium in New Jersey, Spain's relentless possession game meets Argentina's experience and star power. The stage, the biggest show on earth, Football World Cup final, from the greatest of all time to football's brightest young superstars. Here, of course, are the six players who would decide the biggest match in the football history of FIFA.
5: He has delivered when Argentina has needed him the most. Lautaro Martinez's late winner against England sent the Albiceleste into another World Cup final, underlining his reputation as a big game striker. With three goals in the tournament and one of the highest attacking ratings in FIFA's player metrics, Martinez has become the perfect partner for Lionel Messi. Give him half a chance inside the box and he will punish you. Spain's title challenge has been built from the back. Goalkeeper Unai Simon has produced one of the finest World Cup campaigns ever by a shot stopper. Six clean sheets in seven matches, a remarkable 92% save rate, and a 650-minute streak without conceding, breaking Walter Zengar's long-standing World Cup record. If Spain are lifting the trophy, chances are Simon will have another masterclass. Enzo Fernandez is the heartbeat of Argentina's midfield. He has quietly become one of the tournament's most complete midfielders. Two goals, relentless pressing, and the ability to dictate the tempo have made him indispensable. Against Spain's possession-heavy midfield, Fernandez's energy and ball-winning ability could be just as important as anything Messi produces further forward. Every great team needs a

0: चाहे मंदिर का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, वो तमाम मुद्दे जो इस समय देश के सामने हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन मुद्दों पर सरकार चर्चा कराए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जहाँ तक संसद चलाने का सवाल है, उसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। प्रतिपक्ष चाहता है कि देश के जो मुद्दे हैं उठें, वो सरकार से अपेक्षा करता है कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। तनाव जब पैदा होता है, जब जनजीवन से जुड़े हुए सवालों पर भी सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता।
1: वो सभी समय उन्होंने पब्लिश कर रहे हैं, हम नहीं अबेट करेगा। हम पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के ओपिनियन और उसको एडवाइस में नहीं हमारा काम कर रहे हैं। हमारा इंडिपेंडेंट है, दिस अवर डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को कुछ भी नहीं है, वो हमारा राइट है प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, नथिंग।
2: AI जनरेटेड फोटोज नहीं लाना चाहिए, पिछले सत्र में हंगामा हुआ था इस पर।
1: उसके बाद दैट्स अ अलग इशू है, डिफरेंट इशू है, बट इसमें पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को कोई काम नहीं है,
2: कोई अधिकार नहीं है,
1: कोई अधिकार नहीं है। वो स्पीकर का अधिकार होना चाहिए, इट्स नॉट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस। स्पीकर हैव द अथॉरिटी टू से सो, नॉट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी।
2: आप अपना जैसे प्रदर्शन करते हैं सत्र में करते रहेंगे।
1: हाँ, करते रहेंगे डेफिनेटली।
3: All right, we're shifting our focus to the big breaking news that's coming in at this point in time, and this is in regard with Sona Wongchuk's wife's plea at the Delhi High Court, where she had requested her husband Sona Wongchuk to be shifted to a private hospital. The Delhi High Court had a special Sunday sitting. It was hearing the case, and now we have the arguments that are coming forward from the case, where the Delhi High Court has asked the government and had asked if it was extremely necessary and compelling for Delhi police to take Sona Wongchuk to the hospital, and why couldn't we treat it at the protest site. To which the ASG, who's arguing for the government, has said that Sona Wongchuk has been on a fast for 18 days in a humid weather, and hence a lot of damage can happen to the body, including kidney damage as well. So the arguments are taking place inside the court. Kapil Sibal is the one who is fighting from Sona Wongchuk's side. He is representing the plea as a lawyer which Sona Wongchuk's wife had filed in Delhi High Court. Remember, it all comes after yesterday's incident, where we saw how Delhi police had taken Sona Wongchuk from the protest site to Safdarjung Hospital, which is a government hospital, soon after which Sona Wongchuk's wife had then said that there was no need for her husband, that is Sona Wongchuk, to be shifted to a government hospital, and that they are requesting that Sona Wongchuk to be shifted out of the government hospital to a private hospital. Soon after which, a plea was filed by Sona Wongchuk's wife in the Delhi High Court, requesting the shifting of Sona Wongchuk to a private hospital. Arguments taking place inside the court. Nupur is joining me on the broadcast on that note. Nupur, heated arguments taking place inside the court. The ASG for government is seen arguing that

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: TV. मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
1: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
2: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
3: We learn that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
4: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
5: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया. जहां भी अन्याय हो,
4: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
5: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है.
4: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे. क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
5: प्रशिक्षण हम हमारे
4: नहीं मांगेंगे
5: सर.
0: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, corporator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
8: अरे मेरे
9: राजा.
0: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
10: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
11: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
12: We should be awarding companies and individuals who have

0: All right, some latest news coming in. Gitanjali Angmore to challenge the High Court order by the single judge bench today in front of the double judge bench. Senior advocate Vivek Tanka told NDTV that he will be filing a plea challenging today's order in front of the divisional bench of the High Court. We'll also seek urgent hearing tomorrow. This pertains to Wang Chuk's case. His wife is all set to challenge the order of the single judge. Nupur with us on the broadcast. Nupur, give us more perspective. What are the grounds on which they are challenging this before a division bench?
1: Well, Anusha, first of all, today the main prayer by Gitanjali Angmore, wife of Sonam Wangchuk, was that they want to shift him to a private hospital, Medanta. They said that there's no FIR against him, he's not under detention, and they want him to be treated by a doctor of their own choice in a hospital of their own choice. But the High Court said that even the High Court noted the submissions made by the government and noted there was severe threat to Sonam Wangchuk's life, noting that the potassium levels were dangerously low, and the High Court said that there was no arbitrariness involved in government moving Sonam Wangchuk to government hospital, and therefore it declined to grant any interim relief today. Now, against this very order of the High Court, Gitanjali Angmore will be moving a petition challenging this High Court single judge bench order before a double judge bench of the Delhi High Court, and they will also be pressing for an urgent hearing tomorrow on the same. Their prayer remains that they want Sonam Wangchuk to be shifted to a private hospital of their own choice.
0: A two-judge bench or a division bench, all set to hear the challenge filed by Sonam Wangchuk's wife to by the order of the single judge bench, the order that came. Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. The Delhi High Court refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit himself. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to see him. Wangchuk argued that the government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claimed that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
2: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी वो पोटेशियम 4.3 था बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे दैट्स नंबर वन नंबर टू अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे
3: वी हैड कम विद वेरी हाई होप्स टू द हाई कोर्ट बिकॉज द लार्जर क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन इज नॉट अंडर डिटेंशन अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है तो कोई रोक सकता है क्या ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा और हमारा ये कहना है हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देयर इज नो केस अगेंस्ट मी सो टुडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे

0: वी आर ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
4: so many attacks,
3: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right, and Center.
3: Hard facts.
5: War struck country.
3: Hard questions.
5: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine. In France. In Italy.
6: At Srinagar.
5: France.
7: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा,
11: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
12: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
13: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
14: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
15: It's also important that how they are reshaping the industries.
16: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
17: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: देश का टायर, जेके टायर। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: We are over, जिमी।
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
4: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस, सो आई रिवाइंड, आई पॉज, आई रिफ्लेक्ट, आई डिग अंटिल व्हाट्स बरीड स्टैंड्स अप to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
0: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious.

0: From the all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to attend such meetings, but now it's the Defence Minister who chairs them.
1: 40 political party ka floor leaders ne all-party meeting mein attend kiya hai aur sabne apna mat rakha hai. Humne shuru se appeal kiya. Raksha Mantri Adarniya Rajnath Singh ji ne shuruaat mein appeal kiya ki monsoon satra aise samay mein chal raha hai. कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है. तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया. बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है.
2: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर इन द पार्लियामेंट हाउस, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर एंड ईच वन ऑफ अस हैव बीन इंटीमेटेड सेपरेटली दैट व्हाट वाज आवर प्रीवियस डिवीजन नंबर एंड व्हाट इज नाउ द न्यू नंबर अलॉटेड टू अस. सो ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन बाय द स्पीकर इवन विच रिफ्लेक्टेड जो आज सुबह सर्वदलीय बैठक में भी हुआ था, सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था. हम लोगों को क्यों बुलाए? तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
3: जी,
2: क्योंकि स्पीकर शिक्षित दे दिया, डिविजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे, एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुल के
3: आप समर्थन
4: करेंगे.
5: It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representation is a pending speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting. And we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
6: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
5: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
6: Are you saying that this has never happened?
5: Never ever happened in any country.
7: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
8: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है. तो ये तो पूरे देश में हो रहा है. कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है. अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं. ये लोकतंत्र है, लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एक तंत्र आने वाला है. इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है.
6: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था, पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
8: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना.
6: कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका
8: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर. अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है, अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे.
9: Limitation attempt to discuss, that is not, I don't know whether it's coming. No, but what is coming or not, we don't know that. They're not in the list, we have seen that. It's not. No, no, no.

0: ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
3: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली। Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh M'hatre?
4: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
5: And joining me live from Mumbai is Ramesh M'hatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
6: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
5: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
6: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
5: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
6: प्रशिक्षण हम हमारे
5: नहीं मांगेंगे
6: सर।
7: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh M'hatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
8: Launch control, 0 to 100.

0: Court is set to hear the donation theft case tomorrow. Solicitor General Tushar Mehta to appear for the UP government, and that's the word coming in. My colleague Nupur is joining us on the broadcast to give us more perspective on the story. Nupur, give us more details. What is expected tomorrow?
1: Well, Anusha, if you remember, last Monday, the Supreme Court had in fact issued notice to the Ram Mandir Trust, and it had also directed the UP SIT to file a status report of the investigation in a sealed cover in a court. It had also sought details about the people who are part of the SIT investigation team, that is the officers who are investigating the Ram Mandir embezzlement case. Their details are also sought by the Supreme Court. The Supreme Court bench headed by Chief Justice of India Surya Kant will be going through this sealed cover report filed by SIT, and depending on that, it will decide that what it wants to do next. Remember, several petitions are filed in the Supreme Court. Some of them seek CBI probe, some of them seek a transfer of the probe from outside the state, that is away from the SIT and with an independent investigation agency. One petition also seeks CAG audit of the finances of the Ram Mandir Trust. So there are several prayers in several petitions that have piled up in the top court. It will be important to see that what happens tomorrow.
0: Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more. And talking about the monsoon session of the parliament, the monsoon session is set for a stormy start, with the government and the opposition clashing even before the parliament convenes. An all-party meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh briefly saw the opposition walk out in protest over the invitation to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
4: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर in the Parliament House. That has been decided by the Honorable Speaker. And each one of us have been intimated separately that what was our previous division number and what is now the new number allotted to us. So all questions regarding recognition by the Speaker, even which reflected to our Subha Sarvadaliya Baithak mein bhi hua tha. सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था, हम लोगों को क्यों बुलाए. तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
5: जी,
4: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया, डिवीजन नंबर दे दिया, और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे, एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए, हम लोग डील खुल के
5: आप समर्थन करेंगे.
6: The concern is that Islamic Organized Party has been called to this meeting. A party which has not been recognized by the speaker, whose name does not appear on the website. There is no scope for a separate block. Why have they been invited by
5: the party? आप हमारा बैठक पे जा रहे
7: हैं? It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting, and we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
2: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
7: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
2: Are you saying that this has never happened in the past?
7: Never ever happened in any country.
8: Nation is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. This schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
9: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है. तो ये तो पूरे देश में हो रहा है. कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है. अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं. ये लोकतंत्र है. लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है. इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है.
2: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था. पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
9: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना.
2: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार.
9: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर. अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है. अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे.
0: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
10: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में. अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं. और ये है, उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में. और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे.
11: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा. और हमारा ये कहना है, हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड. देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटेन मी, एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देयर इज नो केस अगेंस्ट मी. सो टुडे हाई कोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स. इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. हाई कोर्ट हैज Ask them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है. दे आर 30 पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर और आउटसाइड इज रूम, 100 पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फ्लोर सम प्लेस, जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
12: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में. जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है. कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं, उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं।

0: And this is about the Ram Mandir donation theft probe. The SIT has filed a status report. The UP SIT submits a status report to the Supreme Court. This SIT status report submitted in a sealed cover. The top court is set to hear the donation theft case tomorrow. Solicitor General Tushar Mehta to appear for the UP government. And that's the word coming in. My colleague Nupur is joining us on the broadcast to give us more perspective on the story. Nupur, give us more details. What is expected tomorrow?
1: Well, Anusha, if you remember, last Monday, the Supreme Court had in fact issued notice to the Ram Mandir Trust, and it had also directed the UP SIT to file a status report of the investigation in a sealed cover in a court. It had also sought details about the people who are part of the SIT investigation team, that is the officers who are investigating the Ram Mandir embezzlement case. Their details are also sought by the Supreme Court. The Supreme Court bench headed by Chief Justice of India Surya Kant will be going through this sealed cover report filed by SIT, and depending on that, it will decide that what it wants to do next. Remember, several petitions are filed in the Supreme Court. Some of them seek CBI probe, some of them seek a transfer of the probe from outside the state, that is away from the SIT and with an independent investigation agency. One petition also seeks CAG audit of the finances of the Ram Mandir Trust. So there are several prayers in several petitions that have piled up in the top court. It will be important to see that what happens tomorrow.
0: Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more. And talking about the monsoon session of the parliament, the monsoon session is set for a stormy start, with the government and the opposition clashing even before the parliament convenes. An all-party meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh briefly saw the opposition walk out in protest over the invitation to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
4: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर in the Parliament House. That has been decided by the Honorable Speaker. And each one of us have been intimated separately that what was our previous division number and what is now the new number allotted to us. So all questions regarding recognition by the Speaker, even which reflected to our Subha Sarvadaliya Baithak mein bhi hua tha. सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था, हम लोगों को क्यों बुलाए. तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
5: जी,
4: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया, डिवीजन नंबर दे दिया, और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे, एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए, हम लोग डील खुल के
5: आप समर्थन करेंगे.
6: The concern is that Islamic Progressive Party has been called to this meeting. A party which has not been recognized by the speaker, whose name does not appear on the website. There is no scope for a separate block. Why have they been invited by
5: the party? आप हमारा बैठक में जा रहे
6: हैं?
7: It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting, and we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
2: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
7: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
2: Are you saying that this has never happened in the past?
7: Never ever happened in any country.
8: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
9: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है. तो ये तो पूरे देश में हो रहा है. कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है. अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं. ये लोकतंत्र है. लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एक तंत्र आने वाला है. इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है.
2: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था. पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
9: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना.
2: कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार.
9: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर. अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है. अगर उनकी तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे.
0: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
10: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में. अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं. और ये है उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में. और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे.
11: We had come with very high hopes to the High Court because the larger question is if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा. और हमारा ये कहना है हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड. देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी. सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स. इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. हाईकोर्ट हैज ask them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे

0: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है। तो ये तो पूरे देश में हो रहा है। कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है। अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है। इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है।
1: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था, पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
0: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना।
1: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार।
0: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर, अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है। अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे।
2: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
3: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
4: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है। There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
5: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा अबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है.
2: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna's controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
6: ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಬಕವ್ರೆ. ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ್ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡ ಹೇಳ್ದ.
7: ವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಪೊಲಜೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್.
8: ಆಫ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರೇಜನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೋಜಿನಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ದ ಬಿದಾದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, in order to take away the farmers' lands, agricultural lands, at the cost of the environment, at the cost of the people, to benefit the real estate mafia. And when BJP protests, then they use the most sexist, misogynistic comments against Shobha Karandlaje. A Congress MLA says that this project was started by her yajman. This is the most unbecoming, shocking, disgusting comment to make at women in politics.
2: Torrential rain triggered a flash flood in J&K's Rajouri, causing widespread disruption. Dramatic visuals show powerful flood water sweeping away several vehicles as roads turned into fast-moving streams. One person has been killed in Jammu and Kashmir flash flood. Local authorities have urged residents to avoid flood-prone stretches and follow safety advisories. Officials continue to monitor the situation as water levels remain a concern following heavy rainfall. My colleague Pradeep Datta gets you these ground reports.
9: Pictures around me tell you the story of death, destruction and devastation caused by flash flood triggered by overnight torrential rain here in Rajouri and Poonch district. Here right now I am in Rajouri town and you can see how the flash flood had inundated this area. Many of these vehicles are lying topsy-turvy. Some of them had turned turtle. Some of them are submerged inside debris. And loss of life is also reported from Rajouri town. One woman lost her life when nearby slum area was wiped out by gushing stream of water. It was at about 3:30 a.m. today morning when a river broke its bank and inundated low-lying area. After that, you can see what the gushing stream of water caused here. See, most of the vehicles are lying mangled, damaged, and can't be of any use to people. And here you can see the way the wheel of this vehicle is jammed. It can't move. The same way life here has come to standstill. Many of the houses are damaged. Some shops are damaged. And same is the story reported from Surankot, Bafliyas and other areas in border district of Poonch, where some people have lost their lives because of this flash flood. But despite so many problems, people here are trying to clean their shops. They are once again trying to start their life afresh. Let me show you the condition of this new bus stand. The new bus stand is completely lying in ruins. And also you can see many of the poles, electric poles, are completely uprooted because of the flash flood. The flow of river was so strong that it uprooted trees, it uprooted poles. And here, see the condition of the pole. It is completely uprooted and the bus stand is lying in ruins, and large number of police personnel, they are deployed here and they are blowing whistle again and again. There's a warning sign asking people not to come closer to a stream and the gushing stream of water that is flowing here nearby. A reason is obvious, because meteorological department has come out with weather advisory as per which the rainfall will continue till July 23rd. So there can be again flash flood like situation. That's one of the reasons that they do not want any kind of loss of life. That's why they are preventing people from moving towards low-lying areas. They are preventing people from moving towards streams or riverbank. And let me show you. See, look at again. Let me show you. From the top angle, look at this. This bus stand, it will not be wrong if I say this bus stand has been converted into a graveyard of vehicles. Mangled trucks, topsy-turvy cars, jeeps turned turtle, some of them completely submerged under debris. Almost every vehicle is damaged. More than 50 vehicles right now are completely damaged because of this flash flood. And let me show you, some of the vehicles were swept away. The current of river was so strong that it swept away many of these vehicles. It also swept away many of these boulders. 11 precious lives, including women and children, lost their lives because of flash flood triggered by incessant rainfall in twin border district of Poonch and Rajouri. Today morning, swollen Darhali River, breached banks and inundated low-lying area. Many vehicles here in Rajouri town were swept away by the gushing stream of water. This is not the only vehicle that was damaged, but more than 100 vehicles were swept away and damaged because of this flash flood. But all you can right now see is boulders everywhere scattered, because these boulders were brought by the gushing stream of river that inundated this area, that completely marooned this area. Now look at these vehicles. See how these vehicles are lying mangled here, some of them topsy-turvy, they've turned turtle, and this shows that how strong was water current at the point of time when river inundated this area. And this was the bus stand. Now it looks like graveyard of vehicles. You can see vehicles of different type totally mangled here, some of them turned upside down and some of them turned turtle. Now the question arises, when you look at these vehicles, many people must be thinking, how come this vehicle can fly and just be there? It was because of the fast flowing river that swept away these vehicles.
2: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side.

0: on this TMC split. When the speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
1: Are you saying that this has never happened in the past?
0: Never ever happened in any country.
2: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. The schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
3: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है. तो ये तो पूरे देश में हो रहा है. कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है. अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं. ये लोकतंत्र है. लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है. इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है.
4: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था. पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
3: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना.
4: उनका कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार.
3: ये तो अब ऑपोजिशन को बताए ये बात लिखकर. ऑपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है. अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे.
5: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
6: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में. अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं. और ये है, उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में. और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे.
7: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा. और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड. देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी. सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स. इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. हाईकोर्ट हैज ask them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
8: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में. जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है. कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं. उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं. बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है. सो

0: petition also seeks CAG audit of the finances of the Ram Mandir Trust. So there are several prayers in several petitions that have piled up in the top court. It will be important to see that what happens tomorrow.
1: Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more. And talking about the monsoon session of the parliament, the monsoon session is set for a stormy start with the government and the opposition clashing even before the parliament convenes. An all-party meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh briefly saw the opposition walk out in protest over the invitation to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
4: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर in the parliament house. That has been decided by the honorable speaker. And each one of us have been intimated separately that what was our previous division number and what is now the new number allotted to us. So all questions regarding recognition by the speaker, even which reflected jo aaj subah sarvadaliya baithak mein bhi hua tha. सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था हम लोगों को क्यों बुलाए तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
5: जी
4: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया डिवीजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुलते
5: आप समर्थन करेंगे
6: द कंसर्न इज दैट इस्लामिक कांग्रेस पार्टी हैज बीन कॉल्ड टू रिकॉग्नाइज पार्टी व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर हुज नेम डज नॉट अपीयर ऑन द वेबसाइट देयर इज नो स्कोप फॉर अ सेपरेट ब्लॉक व्हाई हैव दे बीन इनवाइटेड बाय
5: आप अभी दोबारा बैठक में जा रहे
6: हैं
7: इट्स अ मैटर ऑफ इंटीग्रिटी of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting. And we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
2: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
7: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
2: Are you saying that this has never happened in the past?
7: Never ever happened in any country.
8: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. This schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the
9: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है तो ये तो पूरे देश में हो रहा है कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है, अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है, इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है।
2: कर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था, पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
9: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना।
2: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार,
9: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर, अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है, अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे।
1: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
10: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी, अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
11: We had come with very high hopes to the High Court, sure. Because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिसइंटरप्रेटेड। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देयर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टुडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज आस्क देम टू ऑल्सो शेयर रिपोर्ट्स विथ हर, हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है। There are 30 policemen standing near or outside his room, 100 policemen standing in the ground floor or some place, जैसा इन्हें मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
12: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है, कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं, उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं, बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं थोड़ा सा अबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है, सो उसका हम जाँच कर रहे हैं लगातार, हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
1: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
13: ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಬಕವ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ್ದು ಒತ್ಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ನಡ ಹೇಳ್ದ.
14: ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಪೊಲಜೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್.
15: ಆಫ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬ್ರೇಜನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೋಜಿನಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿದಾದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ in order to take away the farmers' lands, agricultural lands, at the cost of the environment, at the cost of the people, to benefit the real estate mafia. And when BJP protests, then they use the most sexist, misogynistic comments against Shobha Karandlaje. A Congress MLA says that this project was started by her yajman. This is the most unbecoming, shocking, disgusting comment to make at women in politics.
1: Torrential rain triggered a flash flood in J&K's Rajouri, causing widespread disruption. Dramatic visuals show powerful flood water sweeping away several vehicles as roads turned into fast-moving streams. One person has been killed in Jammu and Kashmir flash flood. Local authorities have urged residents to avoid flood-prone stretches and follow safety advisories. Officials continue to monitor the situation as water levels remain a concern following heavy rainfall. My colleague Pradeep Datta gets you these ground reports.
16: Pictures around me tell you the story of death, destruction and devastation caused by flash flood triggered by overnight torrential rain here in Rajouri and Poonch district. Here right now I am in Rajouri town and you can see how the flash flood had inundated this area. Many of these vehicles are lying topsy-turvy. Some of them had turned turtle. Some of them are submerged inside debris. And loss of life is also reported from Rajouri town. One woman lost her life when nearby slum area was wiped out by gushing stream of water. It was at about 3:30 a.m. today morning when a river broke its bank and inundated low-lying area. After that, you can see what the gushing stream of water caused here. See, most of the vehicles are lying mangled, damaged, and can't be of any use to people. And here you can see the way the wheel of this vehicle is jammed. It can't move. The same way life here has come to standstill. Many of the houses are damaged. Some shops are damaged. And same is the story reported from Surankot, Bafliyas and other areas in border district of Poonch, where some people have lost their lives because of this flash flood. But despite so many problems, people here are trying to clean their shops. They are once again trying to start their life afresh. Let me show you the condition of this new bus stand. The new bus stand is completely lying in ruins. And also you can see many of the poles, electric poles, are completely uprooted because of the flash flood. The flow of river was so strong that it uprooted trees, it uprooted poles. And here, see the condition of the pole. It is completely uprooted and the bus stand is lying in ruins, and large number of police personnel, they are deployed here and they are blowing whistle again and again. There's a warning sign asking people not to come closer to a stream and the gushing stream of water that is flowing here nearby. A reason is obvious, because meteorological department has come out with weather advisory as per which the rainfall will continue till July 23rd. So there can be again flash flood like situation. That's one of the reasons that they do not want any kind of loss of life. That's why they are preventing people from moving towards low-lying areas. They are preventing people from moving towards streams or riverbank. And let me show you. See, look at again. Let me show you from the top angle. Look at this. This bus stand, it will not be wrong if I say this bus stand has been converted into graveyard of vehicles. Mangled trucks, topsy-turvy cars, jeeps turned turtle, some of them completely submerged under debris. Almost every vehicle is damaged. More than 50 vehicles right now are completely damaged because of this flash flood. And let me show you, some of the vehicles were swept away. The current of river was so strong that it swept away many of these vehicles. It also swept away many of these boulders. 11 precious lives, including women and children,

0: happens tomorrow.
1: Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more. And talking about the monsoon session of the parliament, the monsoon session is set for a stormy start with the government and the opposition clashing even before the parliament convenes. An all-party meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh briefly saw the opposition walk out in protest over the invitation to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing them.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
4: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर इन द पार्लियामेंट हाउस दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर एंड ईच वन ऑफ अस हैव बीन इंटीमेटेड सेपरेटली दैट व्हाट वाज आवर प्रीवियस डिवीजन नंबर एंड व्हाट इज नाउ द न्यू नंबर अलॉटेड टू अस सो ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन बाय द स्पीकर इवन विच रिफ्लेक्टेड जो आज सुबह सर्वदलीय बैठक में भी हुआ था सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था हम लोगों को क्यों बुलाए तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
5: जी
4: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया डिवीजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुल के
5: आप समर्थन करेंगे
6: The concern is that Islamic organized party has been called to this meeting. The party which has not been recognized by the speaker, whose name does not appear on the website, there is no scope for a separate block. Why have
7: It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting. And we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
8: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
7: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
8: Are you saying that this has never happened?
7: Never ever happened in any
9: country. Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of them.
10: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है तो ये तो पूरे देश में हो रहा है कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं ये लोकतंत्र है लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एक तंत्र आने वाला है इसी का हम विरोध करते हैं क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं
8: है को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
10: है लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना
8: कहना है कि वो किसी

0: to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing them.
1: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
2: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
1: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be
2: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
3: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर इन द पार्लियामेंट हाउस दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर एंड ईच वन ऑफ अस हैव बीन इंटीमेटेड सेपरेटली दैट व्हाट वाज आवर प्रीवियस डिवीजन नंबर एंड व्हाट इज नाउ द न्यू नंबर अलॉटेड टू अस सो ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन बाय द स्पीकर Even which reflected जो आज सुबह सर्वदलीय बैठक में भी हुआ था सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था हम लोगों को क्यों बुलाए तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
4: जी
3: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया डिविजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुल के
4: आप समर्थन
5: करेंगे
6: It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting. And we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
7: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
6: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
7: Are you saying that this has never happened in the past?
6: Never ever happened in any country.
8: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yeah. This schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
9: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है तो ये तो पूरे देश में हो रहा है कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं ये लोकतंत्र है लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है इसी का हम विरोध करते हैं क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है
7: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
9: है लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना
7: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं उनका
9: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे
0: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuck to a private hospital. Wangchuck will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuck did not self-admit. Wangchuck's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuck argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuck has no access to his own doctors or the legal counsel.
4: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में। अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
5: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बींग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज आस्क देम टू ऑल्सो शेयर रिपोर्ट्स विथ हर। हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है। दे आर 30 पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर और आउटसाइड हिज रूम, 100 पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फ्लोर सम प्लेस, जैसा इन्होंने मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
10: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
0: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna's controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
11: Mehmanan babat kusato sobaka ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ ಅವ್ರ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದು ಶೋಭಕ್ ಅವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೋಭಕ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ್ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡ್ಡ ಹೇಳ್ದ.
12: Well, it is now in the village like